की सेवा सौ सुख राज न रही। फिर प्यारी सास संगत राड़े राणी दे उद्यम नाल फिर राजा सत्संगी बन गया। स्त्री नु वाहिगुरु ने बड़ा बल दिता। कई तो इन कहते ने अबला है, पर मैं तो कहना आदमी नालो स्त्री ज्यादा ताकत ज्यादा बल है। तुसी तक लो ना, स्त्री दो काराबाद कर दी। स्त्री जो है ए दो कर, अपने पिता दा कर भी आबाद कर दी है, ते अपने सहुरिया दा कर। आदमी इको कर ही आबाद करता है, अगो तेरी वाहिगुरु। ये विचार दी बात है। एदे अंदर बल ज्यादा होया ना, ताई बाबे ने स्त्री नु बड़ा मान बख्श। स्त्री दे हाथ विच सब कुछ है, ए पति नु जैसा चाहे बना सकदी। एदे अंदर ताकत, पर थोड़ा जिहा तहमल चाहिदा, थोड़ी जी विचार चाहिदी है, थोड़ा जिहा सत्कार चाहिदा है। तलखी विच नहीं आना चाहिदा। जे पति गलती करदा प्यार नाल समझाना, समझदे समझदिया तो पशु भी समझ आते। आखो श्री भाई सुनदे सुनदे इंसान है। तो मेरे कहण का मकसद, स्त्री के अंदर वाहिगुरु ने बड़ा बल रखे। तक लो राणी तारा ने अपने सत्संग दे शक्ति दे नाल राजे हरिश्चंद्र नु सत्संगी बनाया। सत्संगी नहीं बनाया, राजे नु धर्मी बनाया। राजा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मी राजा है। और ए वस्तु कितों मिली? तेरी सात संगत ए सत्संग विचों मिली, नाम विचों मिली। तो आओ प्यारी सात संगत, आप भी धन हो जो ओ सत्संग विच आप सारे जुड़े हो। अज मैं तो यह समझदा भी सारा दिन ही तुसी सत्संग की अमृत वेले तो लै गए, अज सारा दिन नहीं। वाह, यह है गुरु की बख्शिश ते तुहाडा प्यार। जिस प्यार दे बूटे नू मालिक ने मेरा दे फल लाए। अमृत वेले भी कीर्तन, गुरुद्वारे भी कीर्तन, ते इधर सार तारा सिंह जी बच्ची जी तो सारे परिवार नू बाबा जी ने प्रेरिया भी घर सत्संग होना चाहिए, कीर्तन हो जाए। बड़ा महत्व है, जिस घर विच गंदे जरासीम हो जाए ना ज्यादा, तो बीमारी पैण का खतरा हो जाता। फिर असी की करते हैं, DDT छिड़कते हैं ता जो जरासीम मर जाते, बीमारी तो बच जाते हैं। ते जिस घर च दुख कलेश आ जान, बाबा जी बचन करते सन, उथे कीर्तन हो गया, खो श्री वाहेगुरु। बाणी का अमृत छिड़को, नाम रूपी अमृत छिड़कोगे तो फिर की होगा? नस वजो किल विखो करता था। इथे गुरु आ जा तो इना बच्चिया ने बड़ा उद्यम किया, बड़ी गुरु दी मेहर। यंग हन दोवें, पर मैं तो कहांगा जवानी सफल, नहीं तो जवानी मस्तानी होंगी। जवानी एक ऐसा मोड़ है, चंगे पासे तो तुरना ही नहीं ना, चंगी गल तो करनी नहीं ना। किसे गुरमुख ने लिखिया भी एक जवानी दूजा धन पले, फिर साई दी मेहर होवे तो सीधा चले, नहीं तो डिंगा ही डिंगा तुरदा जांदा है। तो ओ नौजवान बच्चे जो रोज आके गुरुद्वार जुड़दे हैं, ते इना बच्चिया ने उद्यम किया है, इना दा उद्यम सफल, सत्संग कराया है, गुरु दी बख्शिश प्राप्त कीती है। फिर इना दे उद्यम नाल आपा सारे गुरु नाल जुड़े हां, ए भी बड़ा पुण्य। बाबा जी वचन करदे सन, किसे नू गुरु नाल जोड़ देना इस तों वड्डा पुन कोई नहीं है, किसे नू तोड़ देना इस तों वड्डा पाप कोई नहीं। तो इस परिवार ने जो कालना काली है, तो गुरु बाबा बख्शिश करे, आपां अरदास करनी है इन्हां बच्चियां दे सिर ते गुरु सदा मेहर प्रयात राज जोग भक्ति शक्ति सारियां दातां गुरु बख्शे। इना दे उद्यम नाल आपां जुड़े हां, सानू भी गुरु आप दे चरणा नाल जोड़ी रखे। ते नाम बाणी दी दात, ते कीर्तन दी दात गुरु सदा बख्शे, क्योंकि यही सिख दा जीवन है, यही सिख दा महान उच्चा आदर्श है। जिस वेले प्राप्त कर लेंदा है।

0: जो सांस गिरा सत्याए मेरा हर हर सोमर से जो गुरु मन भाव
1: जनु दयाल होए मेरा स्वामी
0: तिस गुर सिख गुर उपदेश सुनावे
1: तिस गुर सिख गुर

सावा नित खड़ी मुझो बन बाली राम राजे तार गुर हर मार जाली मेरे मन सा नाम धार है खूने जाली जन्ना ने सदगुर मेल हर हर मिलिया बन वाली सुख मैला सुश्री पतर से प्यार बसे से देखो

शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृते सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने देव नानक का दास है सोई निरंजन दे एक शब्दं सर्व देवा देव देवात आत्मा आत्मा।

0: सब सब को
1: सबको आखे अपना जिसना ही सोचड़ कदिया पीता आपो अपना भी लेखा संडिया यार नहीं आते जग तक।

जो सवाल पहला भी पूछा गया सी, इज अवर ट्रू सेल्फ और इज अवर ट्रू सेल्फ अवर कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस. कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस आर नॉट टू थिंग्स. सो अवर कॉन्शियसनेस इज अवर ट्रू सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस इज अवेयरनेस. सो जो प्रैक्टिस है वो ये है टू बी कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑल द टाइम. इफ यू गो ऑन प्रैक्टिसिंग दिस स्टे कॉन्शियस ऑफ द कॉन्शियसनेस बी अवेयर ऑल द टाइम दैट आई एम अवेयर ऑफ माई अवेयरनेस. अगर तुम वह करोगे तो तुम अपने ट्रू सेल्फ के नाल अपना रिश्ता गंढ रहे होगे. द मोर यू डू द मोर क्लोजर यू गैट. सो जितना ज्यादा अभ्यास करते जावे करते जावे उस दे विच होर भी चीजा हम जो अगली कीर्तना च विचारियां जानगियां उतना असं अपने ट्रू सेल्फ के नजदीक पहुंचते जावे उतने ही शांत होंगे जावे उतने ही ट्रैंकुल होंगे जावे उतने ही स्टिल एंड साइलेंट होंगे जावे उतने एकांत और चुप रहने की आदत ज्यादा बन जाएगी. जो जो ये चीज बढ़ेगी एकांत प्यारी लगेगी. महाराज जी गुरु नानक साहब जी की बाणी की एक तुक है रहे एकांत एको मन वसया आसा महे निराशो. कहते वो सज्जन फिर एकांत विच रहिंदे हैं ज्यादा क्योंकि अपने सेल्फ नाल रहिंदे हैं. एकांत का मतलब ये नहीं कि वह कल्ले होंदे हैं. वह होंदे हैं परमात्मा दे नाल वह होंदे हैं अपने अंदर उस जोत दे नाल. जो उस जोत दे नाल जुड़िया पिया उहदा कदों दिल करदा बाहर निकलूं टाइम वेस्ट करन ते अपने आप नूं डिस्टर्ब करन. उसनूं तां मुश्किल बन जांदी है अगर उसनूं अपनी उस जोत नालों टुट के होर किसे दे नाल कुछ बैठना पै जाए. सो रहे एकांत एको मन वसिया आसा महे निराशो उसकी यह अवस्था हो जाती है. गुरु चुप की खिमा नंद साहब का पाठ सारे राम.

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आपने इस पावन पवित्र शब्द दे विच पैरों महला पहला दा शब्द है जो विचार पेश कर रहे हैं, अंधले क्या पाया जग आए। इस पंक्ति तो यह सिद्ध हुंदा है कि इंसान ने इस जन्म दे विच आके कोई खास वस्तु प्राप्त करनी सी, कोई बहुत उचेची चीज इसने हासिल करनी सी। सिर्फ वो इसका मिशन सी, इसका पर्पस। अंदले क्या पाया जग आए, पाप के इत्थे आके कुछ पाना सी। महाराज जी ने पूछिए, सच्चे पातशाह, वो वस्तु जो असी पानी सी, वो किथे है? जो असी पानी सी, वो वस्तु है किथे? तो गुरु साहब उसका जवाब देते हैं, कहते हैं

सोचो नाल नाल करके इस कीर्तन में आहिस्ता आहिस्ता करांगे ताकि सिंह रिफ्लेक्ट कर सकिए, अपने ते सवाल उठा सकिए, जाग सकिए, ते अपने अपने जीवन होर किसे दे नूं नहीं, अपने अपने जीवन ये पूछ सकिए कि मैं आके की पाया है, मैं की पाया है, अते पौन वाली वस्तु अंदर सी, उस अंदर वाली वस्तु नूं मैं पाया है जां नहीं पाया है। जे नहीं पाया तो फिर हाले तक का जीवन मेरा वो वेस्ट गया है। महाराज जी आखते हैं भई तुहाडे अपने ही अंदर वस्तु सी, दूरों कितों लभण नहीं सी जाना, घरों बाहर जाने की भी जरूरत नहीं सी क्योंकि वो तुहाडे अपने अंदर है। अते उस अपने अंदर वाली वस्तु नूं तुसी पा नहीं सके फिर माण केड़ी गल दा करदे, तुहानूं अपने आप ते किस गल दा माण है। और दूसरी गल, अपने आप नूं तुसी स्याणे किवें समझदे हो? देखो अपने अंदरों ही एक ट्रेजर सी, वो तुसी पाया नहीं, और उसके बावजूद भी अपने आप नूं तुसी स्याणे भी समझदे हो तो फिर मान पड़ी पता नहीं किस गल दा करी बैठे हो। यह तो बहुत ही एक शर्मसारी वाली गल है कि साडे अंदर कोई अमलीक खजाना है, असी उसनू ही नहीं देख सके, उसनू ही नहीं पा सके, पाया कुछ भी नहीं, तो मान इतना वड्डा मान नाल असी भरे पए हैं, पता नहीं असी की पा लिया है। पता नहीं सी की पा लिया है। गुरु बाबा जी हुण शब्द उचारदे कहिंदे हन, ऐ भोलीए इंसान नूं आख्या है, भोलीए जिंदड़ीए तू किहड़ी गल दा माण करदी है, किस गल दा माण करदी है? कहिंदे हन

आखण कहण न थमिए, पाया कुछ नहीं, अंदर ही सी, उसका पता भी नहीं लगा, उसने पाया ही नहीं, कुछ भी नहीं पाया। लेकिन गल बात करके देखो, हर बंदा आखण कहण न थमिए, गल बात दे विच ओ थमदा ही नहीं, चुप ही नहीं करता है। कहिंदे सानू ते इस अफसोस दे नाल गुमसुम हो जाना चाहिदा सी कि एक की हो गया साडे नाल, असी कुछ पाण आए सी, और साडे अपने ही पास सी, साडे अपने ही अंदर सी, असी उसनू पाया नहीं है, फिर असी केड़ी गल दा माण करिए। कहिंदे हन

तेरे अपने घर दे विच इतना रंग है, इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है, इतनी खुमारी है, इतना सुरूर है, इतनी जॉय है। कहंदे हन की ना माने, उसनु तू मान क्यों नहीं लेंदी, थोड़ा जा यत्न क्यों नहीं कर दी कि तू अपने अंदरली जो दुनिया है कि उसनु भी मान के देख। अपनड़े घर हर रंगो, तेरा अपना घर कहंदे हन, बाहरों तेरी जिंदगी जो है वो बड़ी उदास है, बेचैन है, दुखी है, पर तेनू पता नहीं तेरा अपना घर अपना अंदर एक रंगीन दुनिया दे नाल भरिया पिया है। कहंदे हन कोशिश करके, मेहनत करके, हंबला मार के उस अपने अंदरले जगत नू क्यों नहीं मान लेंदी। अगे आखदे हन कहंदे हन

कहते कमलिए बाहर की ढूंढ रही है, बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ घर में, बाहर नाही, बाहर टोले सो परम बुलाही। जिहड़ा बाहर टोल रहा है वो परम दे विच भुलिया पिया है, बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। सुखगुरु बाबा जी आखते हैं सब कुछ तुहाडे अपने अंदर है, पर ऐ अंधले इंसान तू ए दस। फिर वापस उही सवाल आता है कि तू अपने अंदरों अंदरले जगत चो अपनी अंदरली दुनिया चो अपने ही अंदरों तू की पाया है। बस इस सवाल दा इस विचार दे नाल अगर कोई इंसान बेचैन नहीं हुंदा तो वह बहुत गहरी नींद दे विच सुता पिया है। सुते पाए बंदे नूं जो मर्जी आखी जाओ उसते की असर हुंदा है? कोई असर नहीं ना हुंदा। कोई बंदा सुता पिया होवे उसके आले दुआले जो मर्जी कही जाओ उसते कोई असर नहीं हुंदा, उसमें पता ही नहीं लग्या की किया गया। या फिर कोई इंसान बिल्कुल बेहोश होवे उसनु कुछ किया जाए तो उसनु भी पता नहीं चल रहा, तो बेहोश है। या कोई इंसान कोमा च होवे तो उसनु भी कोई पता नहीं चल रहा कि किया गया है। असी किस स्टेट ऑफ माइंड दे विच हां? अगर ते असी अवेकंड हां, जाग रहे हैं, सुरती च हां, सुते हुए नहीं हैं, तो फिर की सानू एक गल बेचैन नहीं करेगी? कोई साडे अंदर सोच नहीं ले आएगी? कोई साडे अंदर फिक्र नहीं पैदा करेगी कि गुरु नानक देव जी का यह शब्द है, गुरु नानक देव जी महाराज वर्गी हस्ती ये कह रही है कि अंधले क्या पाया जगाए, तो जी फिर भी राम ना बैठे रहिए। वो तो वह गल हुई जो बाणी च लिखी महाराज ने कि सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सुन के चुप किया, सबे गल्लां जातियां सारियां जान लिया सुन लिया फिर चुप कर गए, फिर आराम नाल बैठ गए। फिर भी तलाश ढूंढ खोज क्वेस्ट कोई भी आरंभ ना हो, जिंदगी उसे तरह की ही रही कि असीं अजिहे लोग हां। गुरु बाबा जी गुरु नानक वर्गी शख्सियत यह आख रही है अंधले क्या पाया जागाए, मीन्स के इस जगत दे विच आके कुछ पाना सी, तुसी वो पाया है जा नहीं? फर्दर क्वेश्चन, महाराज जी वो पाउण वाली वस्तु किथे है? वो कहिंदे तुहाडे अपने अंदर है, तुहाडे अपने अंदर है।

हठ मजाहू मैं माणक लगा। कहिंदे हठ मैंने हिरदा, अपने हिरदे दे अंदरों ही एक मैं ज्यूल कहिंदे प्राप्त कीता है, लभ्या है, माणक लभ्या है। मुल ना किदा, कहिंदे ए मैं मुल नहीं खरीदया, ए मुल विकदा ही नहीं है, अपने ही अंदर है। पर सतगुरु की गाइडेंस दे नाल, असिस्टेंस दे नाल, सतगुरु की आशीर्वाद दे नाल, उसकी कृपा दे नाल, कहिंदे सतगुरु दा बन के सतगुरु ने मेरे ते कृपा करके मैनू रस्ता समझाया, ढंग समझाया, ते ए माणक, ए ज्यूल, ए ट्रेजर कहिंदे मैं अपने हिरदे दे विचों लब लिया। कमाल है वह जीवन, धन है वह जीवन, उस जीवन नूं निमस्कार। जिन्हां जिन्हां ने कुछ प्राप्त किया उन्होंने अपनी बाणी च दस्या। गुरु अर्जन देव जी आखदे ने पाया लाल रतन मन पाया, अपने मन दे विच ही पा लिया। पाया लाल रतन मन पाया, पाया लाल रतन मन पाया, कहिंदे मैं लाल पा लिया, रतन पा लिया। स्वामी भगत बाणी दे विच आखदे हन, स्वामी रामानंद जी कहिंदे हन कत

कितना स्पष्ट किया है कि वो अवेलेबल है, वो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई कोई उसनु खोजन की कोशिश करे। इम्पॉसिबल नहीं है, जो खोजे सो पावे, वो जरूर पाएगा जो खोज करनी शुरू करेगा। कहते ओ शक्ति, ओ महान मिस्टीरियस वस्तु जो सारे जगत की रचना नु रचती है, बनाती है, सवार दी है, शिंगार दी है, प्रतिपाल दी है, सबना दे अंदर जीवन जो भरती है। कहते ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की होंद, ओ अकाल पुरख जो सारे खंडा ब्रह्मंडा दे विच मौजूद है, उतना ही उतना जितना सारे जगत च मौजूद है इस देही दे अंदर मौजूद है। जो खोज है सो पावे, जो उसनु खोजन की कोशिश करेगा वो उसनु अवश्य पा लेगा। चौथा नुक्ता यह है, वो उसनु प्राप्त कर लेगा। हुण असी यह देखना है कि असी इस बॉडी दे विचों की खोजया है, की लभ्या है, की पाया है। पंजवां नुक्ता, गुरु महाराज जी आखदे हन ए जिहड़ी देही है एक घोड़ी है, भाव कि ए वहीकल है, अते इस देही दे द्वारा ही, इस ह्यूमन फॉर्म दे द्वारा ही तुसी उस पॉइंट तक पहुंचना है जिथे वो ट्रेजर है। जे ए देही ना होवे, ह्यूमन फॉर्म ना होवे, तो तुसी वो वस्तु तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस तक पहुंचने दे वास्ते इस देही ने ही तुहाडी हेल्प करनी है, इस तो तुसी कम लेना है। कहिंदे हन एक घोड़ी है, इस उत्ते तुसी ट्रैवल करना है, तुसी इस दे मास्टर हो, तुसी इस दे ड्राइवर हो, तुसी इस दे संचालक हो, तुसी इस नूं चलाण वाले हो, अते इस दी लगाम तुहाडे हथ विच होनी चाहीदी है। पर ऐसा ते नहीं है, ऐसा नहीं है। कई दफा जो नहीं बोलना चाहुंदे, जो नहीं बोलना चाहीदा, वो असी बोल जाने हां, वो फिर क्यों बोल हुंदा है? जो नहीं करना चाहिदा वो असी कर जाने हैं, तो जो करना चाहिदा है वो असी नहीं करते। तो असी देही दे मास्टर नहीं हां कि असी इसनु अपनी मर्जी दे नाल जो वर्तीए, असी इस इंस्ट्रूमेंट दे गुलाम बन गए हां, सेंसेस दे गुलाम बन गए हां। इंद्री सबल निबल बबेक बुद्ध कर कल दे कीर्तन च आखी सी पंक्ति कि इस दियां इंद्रियां बलशाली हन, हुण ओ धुई फिरदियां हन, ओ खिची फिरदियां हन सानू। ओ गल हो गई है कि सवार नूं हुण घोड़ी खिची फिरदी है, धुई फिरदी है, ओ सवार दा हाल तुसी देख लो की होएगा। घोड़ी किसे दे पास होवे, उस उत्ते सवार हो जाए, फिर उसनू यह ना पता चले कि घोड़ी ने हुण उसनू किधर लैके जाना है। वो उसनु रोकना चाहे वो रुके ना, किसे खड्डे च डिग के ही मरेगा। गुरु बाबा जी आखदे हन इस नू अपने कंट्रोल दे अंदर ले आओ, इस दे मास्टर बनो, ते इस नू उस पासे वल जान नू वरतो जिस पासे वल जान नू तुहानू हदायत कीती जांदी है, उस ट्रेजर लैंड नू जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश करो जिथे खजाना है वो तुहाडे अपने ही अंदर है। कहिंदे हन इस देही दे विच ही है, इस देही तो बिना उसनू पाया नहीं जा सकता। सो इस देही नू विगड़न ना दियो कदे, इस दे स्वभाव विगड़न ना दियो, इस दियां आदतां विगड़न ना दियो, इस दी एनर्जी नू वेस्ट ना करो, इस नू गलत आदतां ना पाओ, क्योंकि ये तुहाडी ट्रांसपोर्टेशन। अगला नुक्ता, गुरु बाबा जी आखदे हन कि ए जो देही है, छेवां नुक्ता, सब तमाम जूना तो श्रेष्ठ है, उत्तम है, सुपीरियर है। आप जी ने एक पंक्ति सुनाना, आज गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों महाराज जी ने लिखिया है, बहुत ध्यान

माली ने पानी दे दे के राखी कर करके सुंदर बगीचा तैयार किया। वेख वेख फुलां नूं खुश हुंदे बगीचे वल झाती मार मार के प्रसन्न हुंदे, मेरी मेहनत सफली होई। कोलों दी इक राही लंघिया, आवाज मार के राही नूं आखन लगा, ऐ राही आ मैं तैनूं अपना बगीचा विखावां। किड्डे सुंदर फुल खिड़े होए हन मेरे बगीचे च, राही मुस्कराया, आखन लगा रात नूं आवांगा शामी आवांगा आके तेरा बगीचा वेखांगा। राही तां टुर गया पर माली गाफल हो गया, जागया नहीं सौ गया, सुता रहा जदों जाग खुली ते सारा बाग मिध्या होया। कोई ऐसा जानवर आया, कोई गऊ मज अंदर आई जेड़ी फुलां नूं मिध मिध के, किधरे वेखो अद्धे फुल खादे होए ने, कोई खुरां थले दिते होए ने, कोई फुल उधर डिगा पिया, कोई इधर पिया, सारा बाग ही पलां विच उजड़ गया। एक एक फुल वाले निगाह मार मार के रोई जांदे, ये की बन गया, ये पलां विच सारा बाग ही उजड़ गया। गोडियां विच मुंह दे के रोई जांदे, ये हो की गया, सोच सोच के हैरान हुंदे। कोलों दी जदों राही आया ते आखन लगा हुण विखा अपना बगीचा, ते राही दा हथ फड़के माली कहंदा, एथे मेरा गुलाब दे बूटे सन, एथे चंबेली सी, एथे औ फुल लगे सन। एक एक फुल दा नां लै लै के, बूटे दा नां लै लै के विखाउंदा है, पर कहंदा हुण ते बगीचे विच कुछ भी नहीं रहा, सारा बगीचा ही उजड़ गया है। ऐसा एक पै गया, कोई काल रूप पै गया कि मेरे बगीचे नूं पल्लां विच उजाड़ के रख दिता है मिंटां विच। ऐ मनुष्य

आज हजूर फिर चले गए। सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर से पहुंच गए कि नारद वे नदी डूब देवी नानकी भी कई ने जाती किया जैसे तेरा वीर वही नदी तो बाहर नहीं निकली और देवी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता वो तो डूबिया उतारना पशु परे मुगत को उतारे पाहन पास उतारे हजू सचखंड पहुंच सचखंड वे नरम अगे नूर ही नूर जानना ही चाहिए उस जोर के अंदर जाके हजूर लीन हो गए जो जर में जर आए खटाना क्या ज्योति सन जोत कुछ समय के बाद उस जोड़े जो सोना कांता है सतगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नानक जी तो अनुमान लोग कल भी जीवन उद्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए सतगुरु ने किया मेरे दादा जी पहले कहो सत्खंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते सहबाजे से सब कुछ आ गया जित दर लख मोहम्मदा का ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम इन्होंने अपने नींद क्यों आवाज आई ने मैं दुनिया भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम इन्होंने अपना नाम जपाया अपने घर की अपनी जनानियों का नाम नहीं मैंने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे बिच नींद नहीं बनी साहबान ने हथ की वाहेगुरु फिर करो कृपा असि मातरों में जाके की दुनिया नहीं तो उस अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा एक नमकारी नाम महा

ऐसों से संदूष के पाख्या जी समाधि आवाज यात्री की कर रहे हो तो हजू

विष्णु महामंत्र देवी देवते का मंत्र नहीं, यह अकाल पुरुष का अपना मंत्र है। सारे श्रोमणी सारे मंत्रों को सब तो जिथे महामंत्र मूल मंत्र का होता है उसे चीज की कार नहीं होती। मानो जिसे निरंकार का मंत्र जितया जाए उसे वाहगुरु दिया बख्शा सदा भरपूर रहती है। सब तो वड्डा जिसने इस मंत्र का जाप किया है उन्होंने किसी मंत्र की लोड़ नहीं, किसी मंत्र सब तो श्रोमणी मूल मंत्र पहली सदगुरु के पास इस महामंत्र की प्राप्ति करते वही नदी जो अज बाहर नहीं है। हमारा किसके गए हजू कह लगे मनाया सत्संग दोहन श्रेणा का आप स्वामी खेले है अंदर मरदाने ने हाथ जोड़ के किया हमारा जिसके जाने सब मरदाने को नार ये सज्जन ठाकुर गए तो ताली मरदाना नार अज अपने वाहगुरु ने देश गए वो तो मरदाने इसे खुश सके हजू कह लगे मरदाने इसका एक कारण कि तेन वाहगुरु ने कीर्तन की कला बखी कीर्तन की दात बखी तेन ना ले जाने तो उसे जाके कीर्तन कर रहे मरदाने जिस कीर्तन ने दुनिया का

इतनी कमाई की कोई ऊर्जा इतनी नहीं। आप नारायण कला धार जग में पर निर्गुण तो सर्गुण बन के दुनिया अनुसार मानते आए, कमी नहीं थी। पर बाबा जी वचन कर रहे सर, इस वास्ते सतगुरु जी ने कमाई की थी क्योंकि दुनिया में उपदेश देना थी कि भाई कमाई करोगे तो गलती बातें कभी ना करोगे। आजकल भी तो कह रही दुनिया क्यों नहीं कि करना कुछ ना पे राम तीनों जय रैपुर में बड़े पैदा हो रहा है। सारी सृष्टि के मालिक को वर्त करना यह भी बड़ा ज्ञान न कभी होती सपना सरला आकार कर्म ले पाइए हो हिकमत साहबा ने कमाई की। भाई साहब भाई गुरुदास जी लिखते हैं साढ़े वास्ते बापू का सारा खजाना पुत्रा वास्ते नैच पुत्र संभालने नलैच नहीं खजाना सारा बापू का बच्चे वास्ते अपने बापू वाहेगुरु तो अकाल पुरख साहबा ने जो दास लिया भाई साहब जी ने

माया धर्म खरीदे गरीब उसको भी मर्यादा पूर्व मासी तो दूसरे दिन एक बड़े बारे को लेते इतना रन बने तीर्थम का कि राजमाता इतने प्रभावित हुए आप संगत की ओर के बाहर आके ते साध संगत जुड़े जा रहे गुरुमत्री दे गरीब कीर्तन का भोग पाया हुक्म होया सेवका सुखी शब्द की हाजरी पर कीर्तन आरंभ किया शब्द पढ़िया कोई आग भी ला गया मेरा प्रीतम से आया हम किस पर आग बिचाई दर्शन हर देखन के कृपा करे तो सतगुरु मेले हर हर नाम से जे सुख दे तो तुझे हरा दी दुख भी तुझे से आई जे भुख दे तो इस ही राजा दुख विच सुख मनाई तरमन काट काट सब अर्पी अग्नि आग जलाई पखा फेरी पानी धोवा जो देवे सुख संगम जुड़ी गई अमृत वे एक वर्ष बाबा जी विरागन लगा के जुड़े सन अकाल पुरख ये सवेरे सुख पढ़ी बाबा जी ने विरागन दा कहन लगे भाई जी की पढ़े गरीब रवाज पखा फेरी पानी धोवा जो देवे बाबा जी कह लगे कदे पखा फेरिया भी है कि एवं पढ़ी जाए कदे संगतां वास्ते पानी धोए हथ जोड़ के कहने गरीब नवाज असि तो पंगतियां पढ़ गए बाबा जी कह लगे फिर जो अमल नहीं किया तो सानू किस तरह उपदेश कर असि नहीं उजिया कीर्तन पढ़ा कहरी खास संगत संत महाराज संत सुजान सिंह जी सारा जन उन्होंने पिता जी का जोड़ी वाला सिंह वाजिया तो उठा दिया मन च बड़ी निराश का हुई बाबा जी की प्रसन्नता लैन वास्ते आए उल्टा लिया जी किसी गुरमुख ने कहा कि उदास ना हो क्योंकि बाबिया की ताकना ही ताक महापुरुषों को ताक देने जिन्हों कुछ देना हो मातुरुष बच्चे कुछ कहता है जिन्हों लैस बढ़ाना होता है कुछ उपराला करो सोचिया कि पक्षे का तो मौसम ही क्योंकि उससे बड़ी ठंड होती ख्याल आया भी पानी ले पर पानी बड़ा नीवा चश्मा बड़ी दूर उतो स्नान करके ही मसा उपर चढ़िया जाए कोशिश की थी कैरी खास संगत सिर के उसे तीन चुप लै सारा सारा तेल के कनस्तर चश्मे से पहुंचे पानी भर लिया चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी बड़ा सा चढ़िया आखिरकार जिसे ऊपर आए तो बाबा जी भी नितनेम तो बाद बाहर निकले चिट्टे दुधवर के बस्तर हो चिट्टा दुधवर का दाड़ा मस्तक से रबी दूर नेत्रों से रबी मस्ती बाबा जी कह रहे हैं दास जैसे सारा जत्था पानी लैके ऊपर पहुंचे बाबा जी ने दूर ही वेख्या मुस्कुरा बाबा जी की मुस्कुराहट में भी बड़ी बस्ती मेरे आए कह लगे रख दो जे तेरे पानी दे तीर रखे तो कह लगे कोई नहीं थक गए होगे नहीं गरीब नवाज भावे थक गए पर फिर भी नहीं किया बाबा जी प्रसन्नता विच आए कह लगे कोई नहीं भावे एक तीर लिया जे हुण पंक्ति पढ़न जोगे तो बन गए ना आपको शरीर बना बाबा जी कह लगे बाणी कहण मत कहण दा असर थोड़ा हुंदा है कमाई करके कहियो दा असर पूर रत्ना का बोलिया कन्ना तक रह जाए मन से जाके कदे नहीं मन का बोलिया या मन से जाके बदले तो बाबा जी इतना वक्त कर कहते सर भाई कमाई करके दुनिया में इतनी महान काल बाबा जी ने तपस्या की शरीर जी निर्बल हो गया लकड़ी दिया पौड़ियां बना के फड़ के बाबा जी सारी सारी रात खड़ोते इतनी ही बस नहीं फिर केस बन रहे हैं क्योंकि इस शरीर में दर्द हो गए किधरे सौ न जाए तो इतनी महान धारणा चाहिए एवं तो दुनिया ने पूजी बाबा जी ने क्योंकि बाबा जी ने धन गुरु नानक की पूजा की है इस वास्ते जब नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज अज मेरे धन गुरु नानक ने महान तपस्या की भारी करी तपस्या बड़े भाग हर क्यों बनाई भाई साहब भाई गुरुराज जी ने इधर बाबा पहला खच खंड नामित नाम करी थी नाम का खजाना लिया प्यारे साढ़े वास्ते बाबे ने ते नाल करी थी निम्रता निम्रता सब तो वही है।
बाबा जी के ध्यान पर जल्दी सब पृथ्वी आई, बाजो गुरु गुबार है जल्दी सुनी लुकाई, बाबे पेट बनाया उदासी की रीत चलाई, फिर दरिया शोधन करत नाम का खजाना, ये जरा तुष्टी रिड़ के सारा गुरबत कटके सतगुरु श्री पातशाह दुनिया मिलन वास्ते तुर पे, फिर किस तरह घर घर के जाके बख्शा कीतिया और परीक्षावान ने दिवाया बेनती करेंगे तो आप सारी खास आप धन हो वे पाने वाले हो गुरमुख मारी पाए कि प्यार रखते बैठे अमृत वेले एक खास बख्शी दर्शन एक खास रंग दर्शन कल जो भी आरत की चादर ला के हंस उडारियां मार के आप साहबान सत्खंड भी जुड़े हो देवते बने ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇਵਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਾਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਕਿਸਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਬਲਹਾਈ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਲਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਲੱਗੀ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ

पवित्र है। पहली थोड़ी बोल अमृत ले जाकर स्नान करके चले आए हैं, एक दिन कले तुर जाए एकांत बह के अपने सारे की मूल मंत्र का जाप करे। सर बड़ा महान बड़ी शक्ति है ये लंकारी मंत्र, जितना जप लो यदा बड़ा लाभ। तुरदिया फिरदिया उठदिया बहदिया हर नाम ओ नाम वाहिगुरु जी का ये जपांगे सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा सादा जीवन सफला फिर सादा एक लोक दुखी पर लोक अखीरला दिन आस्था जी की वार का मिलकर लगाइए उस उपरंत कीर्तन की समाप्ति और

0: You're listening to SeekNet Radio, broadcasting live global internet 24 hours a day from around the world.
1: Jo Guru Nanak Dev Patshah Ji ne Dukhari Raag vich ucharan kita us de vichu paado परम पोली पर जोबन पछतानी जल थल नीर परे बरस रुते रंगमाणी बरसे निस्काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रियो प्रियो चवे बबिया बोले ओयंगम फिरे डसंते मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभु तै ही जाइए।

एक ओंकार सत गुर प्रसाद सत्संगियो एक ओंकार परमेश्वर का नाम है। परमेश्वर का नाम सत है, मिलता किवें गुरां दी कृपा दृष्टि दे सदका। ऐसे सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

पावन पवित्र मित्र अज मोरे आई। सुपन चरित्र चित्र पानक तन विचित्र पावन पवित्र मित्र अज मोरे आई। सोमित सजासन तिलासन ते अंकमाल सोमित सजासन तिलासन ते अंकमाल प्रेम रस विषम होए सहज समाए है। प्रेम रस विषम होए सहज समाए चतुर्थ शब्द सुन अखियां कर गई। चतुर्थ शब्द सुन अखियां कर गई। पई तन मीन तक ग्रहण कर

गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं, अपने आप को गुणी समझकर कीर्तन ना कर, मुझ में गुण है। हाँ, मुझे याद है एक बार मैं वैंकूवर बाहर गया, एक रागी जत्था आया, वो थे रबाबी। अब वो रबाबी लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं जब उनका बच्चा रोता है तो वो भी सुर में रोता है। भाई मर्दाने के खानदान से रबाबी लोग, लेकिन इतना गुण परमात्मा ने दिया, लेकिन अहंकार आ गया कि हम लोगों के सिवा और कोई गा ही नहीं सकता। सत्य बलवंडे ने भी अहंकार किया था, हम ना कीर्तन करें तो कोई गुरु नानक को पूछने वाला थोड़ी था। तो वो कहने लगे हमारा कीर्तन उनके बाद में था, तो वो कहने लगे कोई है माई का लाल जो हमारे जैसा कोई शब्द पढ़ सके, जैसा हमने राग गाया कोई गा सके। तो हम पीछे बैठे, मैंने कहा भाई ये कीर्तन है, ये कोई दंगल थोड़ा ही है। एक बार प्यार से बोलिए, ये दंगल नहीं है, यहां कुश्ती नहीं होती। यहां तो जैसे जैसे इंसान में गुण भरते हैं वैसा वैसा इंसान नीचा होता है, निम्रता में आता है। जो यहां भी गुण गाकर अहंकारी हो गए तो फिर निम्रता कहां आएगी, बाहर दंगल में आएगी। यहां तो निम्रता सीखनी है, जितना जितना सेवा की गुरु अंगद देव जी ने उतने निम्रता में भरते गए। जैसे जैसे गुरसिखों ने गीत गाए वैसे वैसे निम्रता आती, नीचे होते चले गए।